पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए। इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं, बावाज़े बुलंद। मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे, बावाज़े बुलंद।

आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता था किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समा फरमाए बाबाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बाबाजे बुलंद, हैदर वर्गा सकीन कोई वेखी आए जग सारा सफर दबेड़ा।

0: बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे हो नारे हैदरी।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: GFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

80 वोट खणी 112 एलए 2 मीरपुर 2 ते पीपल्स पार्टी जो कासिम मजीद 12904 एलए 3 मीरपुर 3 ते पीपल्स पार्टी जो चौधरी यासिर सुल्तान 11676 वोट खणी कामयाब।

मसलनि जे हल लाइ शफ़ाफ़ ऐं गैर तकरारी चूंडूं ज़रूरी आहिनि। आज़ाद कश्मीर में मुहाजरनि जे सीटनि वारो मामिलो जहिड़ी तरह हल थियणु घुर्जे हा, ईअं हल न थियो। चूंडूं तकरारी थियूं त ईंदड़ हुकूमत जो मैंडेट बि तकरारी हूंदो। तकरारी मैंडेट सां ईंदड़ हुकूमत मसला हल न करे सघंदी। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे मुज़फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त कश्मीर में इस्तेकाम लाइ पहिरियों मरहलो शफ़ाफ़ इलेक्शन आहे। आज़ाद कश्मीर जूं चूंडूं हाणे खां ई कुझ तकरारी थी चुकियूं आहिनि। चाहियां थो त कश्मीर जे माण्हुनि खे बि पाकिस्तानी शहरनि जे बराबरी हक़ मिलनि। पीपी जे मंशूर ते अमल सां ई बहरान ख़त्म थी सघनि था।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में मुकर्रर चीन के सफीर जियांग ज़ाई डोंग की मुलाकात विच ओभर अफगानिस्तान ए दखण एशिया समेत खिते के मजमू सूरत हाल ते गालियों वज़ीर-ए-आज़म पारा चीनी सदर शी जिनपिंग ए वज़ीर-ए-आज़म ली जियांग लाए नेक ख्वाहिशन जो इज़हार शहबाज शरीफ चाहे तो बई मुल्क ते थियल फैसलन ए मुआहदन ते अमल लाए वेझो सहकार जारी रखंदा।

दौरान पाकिस्तान ऐं अमेरिका जा लाॻापा वधीक मज़बूत बणाइण ऐं मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण जो अज़म वरजायो वियो। हुकूमत टिन ॾींहनि जे वक़्फ़े खां पोइ डीज़ल वरी महांगो ऐं पेट्रोल मामूली सस्तो करे छॾियो। डीज़ल 3.67 रुपया महांगो थियण खां पोइ नओ अघु 386.83 रुपया थी वियो। पेट्रोल फी 1 रुपयो फी लीटर सस्तो, नओ अघु 334.18 रुपया मुक़रर। जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिब पेट्रोलियम शयुनि जा नवां अघु अॼु राति 12 वॻे खां ईंदड़ 24 कलाकनि लाइ हूंदा।

ईंदड़ ॿिनि महिननि लाइ व्याज जी शरह 11.5% बरक़रार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसीअ जो ऐलान करे छॾियो। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद चयो आहे त जुलाई खां फेबरवरीअ ताईं महांगाई 5.5% हुई। माली साल 2026 में रहियो माली साल 22 में GDP जे हिसाब सां 0.5% रहंदो। सभिनी अदायगियुनि बावजूद नाणे जी मटासटा जा ज़खीरा वधाया आहिनि। भारत खिते में दहशतगर्दीअ जो सभ खां वॾो सरपरस्त आहे ऐं अदम इस्तेकाम जो ज़िमेवार आहे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ भारतीय वज़ीर राजनाथ सिंह जे बयान खे रद्द कंदे चयो आहे त भारत जे जारहाणनि क़दमनि सबबि ख़तरो खितो यरगमाल आहे। भारतीय वज़ीर जे बयानबाज़ी बि ॻणती जोॻी आहे जेका ख़तरनि खे वधीक वधाए रही आहे।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ॻाल्हियुनि खे मौको ॾियण लाइ ईरान ख़िलाफ़ हमला रोकिया। सफ़ारतकारी नाकाम थियण जी सूरत में फ़ौजी कार्रवाइयूं ॿीहर शुरू थी वेंदी। ॻाल्हियूं नाकाम थियूं त ईरान ख़िलाफ़ कार्रवाई वधी सघे थी। ज़रूरत पई त वधीक वॾा हमला इंटरव्यू ॾींदे चयो त अमेरिका ईरान सां संजीदा ॻाल्हियूं करे रहियो आहे, घणो वक़्तु ज़ाया नथो करे सघिजे, ॻाल्हियुनि ऐं सफ़ारतकारीअ खे जल्द उकलायो वञे। नून लीग पंहिंजनि बदमाशनि ऐं गुंडनि खे लगाम ॾे। गुलू बटन पीपल्स पार्टीअ जे हिक ॿिए वर्कर खे शहीद करे फासिस्ट बरकरार रखी। नून लीग उमीदवारनि पारां हथियारनि जे आज़ादाने इस्तेमाल ते इलेक्शन कमीशन जी ख़ामोशी समुझ खां ॿाहिरि आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त फारम 47 जे उमेदवार ऐं हैराती मैंडेट वारा कश्मीर में माहौल ख़राब करे रहिया आहिनि। नून लीग क़यादत कन खोले ॿुधी छॾे कश्मीर जो पुरअमन माहौल ख़राब थियण न ॾिनो वेंदो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM ETH नेटवर्क, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GAFM 90.4।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

بل بل پڑھن دی ہے یار سجر دی ہوندی تاں کو جدائی مسلم وچوں

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीहन जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
2: छावा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252578 6।
3: जी हा, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

दोस्तो यो हर कोई मानू चवंदो आ त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया पर इने किसे जी की के शायद खबर न हुंदी त यो किए थियो छो सडियो त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया आश्क वेचारो जड़ा बीमार थियो यो किसो ता के आ सही करे तो बुझाया आश्क वेचारो जड़ा बीमार थियो पंजे माइटन आई दोस्तन के चई तो मुखे पंजे महबूब जे मुल्क ते खणी हलो आउते मरंदुस जो मुझो महबूब मुझो कुल्हे कांधी थी

आउं ते सोचा पियो जे मुझे मथा मौत आयो ता उनके छा चवंदुस ओ ते

पंज साल ज़रिए अमेरिका जूं पहुचायल तजवीज़ूं रद्द करे छॾियूं। नायब ईरानी परडे॒ही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त अमेरिका सां सालसनि ज़रिए ॻाल्हियूं इस्लामाबाद में थियूं हुयूं, जेके अमेरिका जे गैर ज़रूरी मुतालबनि सबबि नाकाम थियूं, जंहिं बाद अमेरिकी वफ़द इस्लामाबाद खां वापसि हलियो वियो, जंहिं बाद ईरान बि ॻाल्हियूं जारी रखण जी ख़्वाहिश ज़ाहिर न कई। ईरानी फ़ौज चयो आहे त अमेरिका तेहरान जी ॿीहर नाकाबंदी कई त फ़ैसिले खे जंग में वाद समझो वेंदो। ईरान खे ख़रीद नथो करे सघिजे, शिकस्त ॾेई सघिजे थी। असां ईरान खे बुरी शिकस्त ॾेई रहिया आहियूं, अमेरिकी रियासत मिशिगन में तकरीब खे ख़िताब कंदे सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान जे बहरिया फिज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ऐं अस्करी क़यादत खे ख़तम करे छॾियो आहे। ईरान हाणे असां सां मुआहिदे जूं ॻाल्हियूं करे रहियो आहे। ईरान अमेरिकी हमलनि में 60 शहरनि जे शहीद थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरान जे सिहत वारे वज़ारत मूजिबि हमलनि में 670 शहरी ज़ख़्मी बि थिया आहिनि। अमेरिका ऐं ईरान पारां हिक ॿिए ते हमला रोकण बाद आलमी मार्केट में कचे तेल जे अघ में लात जो सिलसिलो जारी। आलमी मार्केट में बैरेंट कचो तेल घटिजी 86.99 डॉलर फी बैरल थी वियो। ईरान ऐं अमेरिका पारां हिक ॿिए ते हमलनि बाद तेल जूं क़ीमतूं 100 डॉलर फी बैरल खां वधी वयूं हुयूं। आज़ाद कश्मीर जे मीरपुर डिवीज़न जे चूंडनि जा गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा अचण जो सिलसिलो जारी। हिन वक़्त ताईं आयल नतीजनि में नवाज़ लीग मैदान मारे वरितो। 10 तकनि मां नून लीग 7 ऐं पीपी 3 सीटनि ते कामयाबी हासिल करे वरिती। रहियल तकनि ते वोटनि जी ॻणप जारी।

0: है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
3: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252578 6।
3: जी हा 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ होगा, सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो ज्ञान मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें हम आपसे करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना जो कि होगा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, और सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे। स्टे ट्यून्ड।

आओगे जी प्रोग्राम में, आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके का से। आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं, सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 888 पे। कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है darris@facebook.com/GFM88 के पेज के ऊपर लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग आपको मिलेगी, जो कि होगी लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग नहीं, पोस्ट मिलेगी, पोस्ट होगी जिंदगी गुलजार है की, उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। तो कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है जी 03000113488। इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं तो जरूर कॉल कीजिए और मेरा साथ दीजिए, क्योंकि हम साथ साथ हैं पूरे 1 बजे तक। स्टे ट्यून्ड।

0: فانديشان وادي النهران. हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो?
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हाँ, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: वंस अगेन आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार आपको मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक एक अदर ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। हमारा सेगमेंट है जी सुर लगाओ गाना सुनाओ और सुर लगाओ गाना सुनाओ में आप लोगों की लाइव कॉल्स को एंटरटेन करने जा रहे हैं। सो शो के फर्स्ट कॉल हमारे साथ कॉलर मौजूद होंगे। हेलो
1: अस्सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम
1: बाजी वफा अब्दुल वहीद गतोई केटी शाबिलो ताल को जिलो सकरा बाजी रुखसार है।
0: ओके और मुझे बताइएगा प्रोग्राम सुन रहे हैं
1: जबरदस्त लश पश रोज जहाँ इंतजार हों पर असल में छा है कुछ मसरूफात कभी बुद्धि भी सकता कभी को बेटी
0: तो गाना सुनाएंगे कोई
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे पर आज गाना हम तुम्हारे को किसके सुनाएंगे मुख्तार शीदी का
0: मुख्तार शीदी का गाना सुनाएंगे।
1: दिल जो सूर दिल में चुपड़ी कयूं बताऊं था कैखे कुछ न चवूं था कैखे कुछ न चवूं था दिल जो सूर आ दिल में बाजी कुछ दोस्त दाए न बाजी रुखसार सजो प्रोग्राम ताने नाले ते हम भाई बाबर साहब खोड़ा सारा सलाम अबूजर जतोया आजाद जतोया और रब नवाज जतोया मंसूर जतोया ते को बाद में जेते बुधंदा वफा अब्दुल वहीद जतोया पारो सजी सता के सलाम।
0: ओके अल्लाह हाफिज थैंक यू 03000113488 के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स को रिसीव किया जा रहा है। सो लाइव कॉल्स को भी रिसीव कर रहे हैं बैक टू बैक एंड हियर कम्स द नेक्स्ट कॉलर। हेलो वालेकुम अस्सलाम कौन बात कर रहे हैं
2: मैं हाफिज लखमी बात कर रहा हूँ।
0: हाफिज लखमी कैसे ठीक ठाक परफेक्ट है
2: अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए
0: मैं बहुत अच्छी और मुझे बताइएगा गाना सुनाएंगे तो सुना दे
2: तो प्ले करेंगे।
0: हाँ जी लेकिन शर्त ये है एक तो रोने धोने वाला ना हो गाना और दूसरा पाकिस्तानी कंटेंट हो।
2: पाकिस्तानी
0: हाँ जी पाकिस्तानी
2: तो सुनवा दो मुझे ये

0: ओके जी, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं. हेलो हेलो. ओके जी, एक और ट्राई करेंगे. हेलो हेलो
1: हेलो, अस्सलामुअलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं?
1: यार मक्तुदुद्दीन गांव फारिन से कामरान अली रिंद कुमारा भाई.
0: कामरान अली रिंद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक.
1: रब ताक के लख लख कर रहे हैं तो जैसे दोनों की बुआएं हमारे साथ.
0: ओके, और मुझे बताइएगा कि यह प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: जी हाँ.
0: गाना सुनाएंगे?
1: जी हाँ. ये नगमा है अता नक्षेलवी और अली जफर की आवाज में. बालो बत्ती आवे माई सकू मारो चल गवाई छोड़ा पण सही अमलाना. जी हाँ, ये है नगमा.
0: ओके जी, किसी को डेडिकेट करना है?
1: जी हाँ दोस्त, बहुत अच्छे हैं. किसके नाम लें? किसके नाम लें?
0: चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखें अपना. अल्लाह हाफिज़.

0: It's time to commercial break.
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बच
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जिल्द को गहराई से साफ कर
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह है मोहब्बत ओ यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4
5: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
6: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन
5: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 0331252578
6: जी हां 2131525786
5: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़
7: ओ अज जल्द मु

0: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है. मुझे कहते हैं आरजी रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कॉल्स के थ्रू. सो कॉल्स आप लोगों की. नेक्स्ट कॉलर, हेलो.
1: हेलो,
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से
1: जी? मैं वकार से
0: वकार भाई. ओके वकार भाई, प्रोग्राम भी सुन रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, गाने का सेगमेंट भी पता है. गाना लेकर आए, कोई गाना याद है?
1: जी जी, गाना याद है.
0: तो सुना दी.
1: गाना है दर्द हो दिल में तो दवा.
0: दर्द वाला ना सुनाए ना, बिना दर्द.
1: बिना दर्द वाला.
0: हाँ, बिना दर्द वाला सुनाए ताकि सुनने वालों को ना पेन किलर ना लेनी पड़े.
1: तो ये गुलाब दींदी रही, उत जो नो खराब दींदी. मंजूर है.
0: किसका गाना है? मंजूर सकीना.
1: मंजूर सकीना.
0: गाने का टाइटल क्या है?
1: इंदे इंदे गुलाब दींदी रही, उत जो नो खराब दींदी रही.
0: तुम जी
1: इंदे इंदे गुलाब दींदी रही, उत जो नो खराब दींदी रही. साता लता समझे.
0: ओके ठीक है, मुझे पता है किसी को डेडिकेट करना है.
1: ये डेडिकेट आपको और मैं रेडी
0: हूँ. ओके थैंक यू सो मच. और मंजूर सकी रानी का ये गाना हम प्ले कर रहे हैं. और जी इसके अलावा कॉल्स आप लोगों की 03000113488. ओके जी, गाना मेरे ख्याल से अगर तो यही वाला है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी हम सुनेंगे इसको.

साथ एक और गाना प्ले करेंगे, गाने के साथ जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे। और जिन लोगों ने हमें कमेंट्स और मैसेजेस कर दिए, थोड़ा सा हौसला कीजिएगा या इंक्लूड करते हुए जाते हैं जी। हाले सुल्तान का कमेंट आया, वेलकम टू द शो स्वीट सी आरजे, वेलकम टू यू एज वेल हाले सुल्तान, थैंक यू, वाव नाइस सॉन्ग आतिफ असलम का माहिया में प्यार परदेसी ने हमें ज्वाइन किया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये सारे कमेंट्स अभी तक के, सो स्टे ट्यून्ड, सुनते की गुलजार है।

वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि काबीना जी तवानाई बाबति कमेटी जो इजलास कमेटी ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 जे मसवदे में तरमीम जी मंजूरी ॾेई छॾी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां ओगरा जी कारकर्दगी बहितर बणाइण सुधार आणण जी हिदायत। शहबाज़ शरीफ चयो त नई पॉलिसी ते अमल खे यकीनी बणायो वञे। वफ़ाक़ी वज़ीरनि जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जे हेड ऑफिस जो दौरो। मौसमियाती तब्दीलियुनि ऐं असरनि बाबति ब्रीफिंग वरिती। NDMA चयो आहे त मुल्क जे मथां इलाइक़नि में गैर मामूली बरसातूं पवण जो इम्कान आहे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त मौसमियाती तब्दीलीअ वधंदड़ आबादी वॾो चैलेंज आहे। आलमी बैंक सां गॾिजी मौसमियाती तब्दीलीअ ते कम करे रहिया आहियूं। वफ़ाक़ी वज़ीर मोइन भुट्टो चयो आहे त पाणी ज़खीरो करण जी सलाहियतुनि में वाधि वक़्त जी ज़रूरत आहे। मुसद्दिक मलिक चयो त मौसमियाती तब्दीली सबब मुतासिर थींदड़ मुल्क सूरतहाल जा ज़िमेवार नाहिनि। वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारण चयो त NDMA सूरतहाल बाबति अॻुवाट अलर्ट करण जो निज़ाम जोड़ियो आहे।

0: जे शहीद थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरान जे सिहत वारे वज़ारत मूजिब हमलनि में 670 शहरी ज़ख़्मी बि थिया आहिनि। अमेरिका ऐं ईरान पारां हिक ॿिए ते हमला रोकण बाद आलमी मार्केट में कचे तेल जे अघ में लात जो सिलसिलो जारी। आलमी मार्केट में ब्रेंट कचो तेल घटिजी 86.99 डॉलर फी बैरल थी वियो। ईरान ऐं अमेरिका पारां हिक ॿिए ते हमलनि बाद तेल जूं क़ीमतूं 100 डॉलर फी बैरल खां वधी वयूं हुयूं। भान सईदाबाद में बंबा ऐं सुल्तानपुर शाखनि जी पुछड़ीअ जे आबादगारनि जो ॿिए ॾींहं बि पाणी कोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। आबादगारनि मुज़ाहिरो करे सुखिया मोरीअ ते धरणो हयो। आबादगारनि मूजिब बंबा ऐं सुल्तानपुर शाखनि जी पुछड़ीअ में ज़रई पाणीअ जी सख़्त खोट आहे, जंहिं सबबि फसलुनि जी पोखी मुतासिर थी रही आहे। पाणी फराहम कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM ETH नेटवर्क, सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: 15.
1: Hi, Bicon International Pakistan.
2: Hi,
1: Mohammed Umar Bughu, Institute of Nursing and Allied Health.
3: And start karne ke baad aapko kehna hoga ek agar tongue twister jo log call pe aayenge वो टंग टू शेक के दिखाएंगे और जो बंदा ज्यादा ज्यादा सही सही अच्छा अच्छा बोलेगा एक तो वो विन कर जाएगा इस सेगमेंट को दूसरा उसको मेरी तरफ से गाना डेडिकेट हो जाएगा अच्छा सा

0: Okay, next caller lene ja rahe hain 0300-113-488. Next, hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Wa alaikum assalam. Kaun kahan se?
1: Main Farooq ka main baat kar raha
0: hu. Okay, kahan se baat kar rahe hain?
1: Moro se baat kar raha hu.
0: Moro se baat kar rahe hain. Mujhe bataen ki pehli dafa call kar rahe hain?
1: Ji ji.
0: Okay, mujhe ye batayega ki ya ha tongue twister
1: gaana sunaoge?
0: Nahi, gaana to main sunaungi, mujhe tongue twister sunayenge. Tongue twister bolenge, sunaye?
1: Ji.
0: Okay, to bole.
1: Unko gaana sunaoge.
0: Okay, chala, hafiz, thank you. Gaana sunane wala segment nahi hai bhai. Keh rahi hu tongue twister sunaye, bolenge. हमको गाना सुनाओ, बस गाना सुनाओ, गाना सुना दो बस. अच्छा, नेक्स्ट कॉलर, हेलो.
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम सरदार, कैसी हो? आपका ही इंतजार था.
2: हाय अल्लाह, मेरे इंतजार.
0: ये हाय अल्लाह कितना अच्छा करती हो सरदार, एक बार फिर से करना. एक बार फिर से करना, 5 रुपए का. अरे वाह, क्या बात है जी, क्या बात है. अच्छा मुझे बताओ, टंग ट्विस्टर सुना है?
2: ऐसे थोड़ी ना कॉल करती हूँ मैं.
0: ऐसे थोड़ी ना कॉल करती है सरदर्द. वाओ, वेरी नाइस. अच्छा मुझे बताओ, टंग ट्विस्टर सुनाओ. वेरी नाइस. ये तो बहुत अच्छा बोला है सरदर्द. और कुछ कहना है?
2: वैसे यार बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी माँ की सरबाई की आवाज. इतने दिनों बाद कल सुने,
0: इतने दिनों बाद सुनी है ना.
2: हाँ, वो भी इतनी खूबसूरत गाना.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और कुछ?
2: अल्लाह,
0: थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज. और मैं सोच रही हूँ कि मैं एक और गाना प्ले करूँ. जो एक और गाना है वो कौन सा होगा, वो मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ. एक और ट्रायल करते हैं जी, जब तक गाना मेरे सामने आए. हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
3: मोहम्मद ताहिर खान लोन भाई.
0: मोहम्मद ताहिर लोन भाई, कैसे? ठीक ठाक.
3: अल्लाह पाकिस्तान.
0: ओके, वेरी नाइस. और मुझे बताइएगा कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, टंग ट्विस्टर सुना बोलेंगे?
3: जी बिल्कुल सुना है, और बोलेंगे.
0: ओके, बोलिए बोलिए.
3: काशा निकलती खेत में
0: ओके, स्टॉप स्टॉप. और कुछ कहना है
3: जी? और दोस्तों को नाम देते
0: हैं? दे दे. और नाम भी बताएं अपना प्लीज.
3: मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर लोन.
0: मोहम्मद ताहिर लोन. ओके, वेरी नाइस. दोस्तों को शामिल कर लें.
3: और जो भी सुना है सबको, आप
0: सलाम. ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू.

0: आपके साथ साथ कॉलर्स को एंटरटेन करते हैं. एंड नेक्स्ट कॉलर, हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: आपसे पहले चैट कर लड़का लाते.
0: ओके, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आसिफ अली चाचर, मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं? टाइम टू सुना बोलेंगे. काशान ने कच्ची कलियां खुले खेत में खिलती देखी.
1: काशान ने थोड़ी कच्चियां खेती में,
0: कच्चियां नहीं कलियां.
1: काशान ने
0: कच्ची कलियां,
1: काशान ने कच्ची कलियां.
0: आपसे नहीं हो पाएगा, कुछ और बोलेंगे, कुछ और कहेंगे.
1: आपका शौक चल रहा हूँ.
0: चले सुनते रहे. एक गाना भी प्ले कर रही हूँ आपके लिए, आपको डेडिकेट होता है जी. आप तमाम लोगों को, जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं. सो हियर कम्स अ सॉन्ग. द सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल बाय बिलाल सईद एंड मेहर ताहिर.

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: छावा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252578।
3: जी हा, 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: की जो वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार आपका और मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का और शो का लास्ट ब्रेक जिसके बाद हम वापस आ चुके हैं. एंड वापस आने के बाद आप लोगों की लास्ट एंड लकी कॉल्स भी हम रिसीव करेंगे आज के बोलो तुम्हारे सेगमेंट के कौन है विनर्स वो भी मैं आपको बताऊंगी. और आज के जो विनर्स हैं ना वो कुछ इस तरीके से हैं कि सरदर्द ने बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर बोला, मोहम्मद ताहिर लुंड ने बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर बोला. तो ये है आज के विनर, आज के सेगमेंट के ये दोनों विनर्स. ठीक है, और इसी के साथ लास्ट एंड लकी कॉलर्स को लेते हैं जी और चेक करते हैं कौन है. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? ओके जी, मोरो वालों की आजकल बहुत कॉल्स लग रही है. प्रोग्राम सुन रहे हैं भाई?
1: प्रोग्राम सुन रहे
0: हैं. कैसा लग रहा है?
1: क्या प्रोग्राम है आपको?
0: अच्छा प्रोग्राम है. अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आज की अच्छी बात क्या है?
1: आज की अच्छी बात बस आपके नाम पे जो है
0: जी,
1: आज की बात मौसम बहुत अच्छा है.
0: मौसम बहुत अच्छा है मोरू का? बारिश वारिश हो रही है?
1: जी जी.
0: अरे वाह क्या बात है, मोरू में बारिश हो रही है वाकई?
1: नहीं बारिश नहीं हो रही, गर्मी नहीं है.
0: गर्मी नहीं है, अच्छा ये चीज है. ओके और कुछ कहना है? टंग ट्विस्टर वो तो सेगमेंट खत्म हो गया. ओहो कॉल ड्रॉप हो गया.

वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि काबीना जी तवानाई बाबति कमेटीअ जो इजलास कमेटी ऑन रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 जे मसौदे में तरमीम जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। वज़ीर आज़म शहबाज़ पारां ओगरा जी कारकर्दगी बहितर बणाइण ऐं सुधार आणण जी हिदायत। शहबाज़ शरीफ़ चयो त नई पॉलिसीअ ते अमल खे यकीनी बणायो वञे। वफ़ाक़ी वज़ीरनि जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जे हेड ऑफिस जो दौरो, मौसमियाती तब्दीली ऐं असरनि बाबति ब्रीफिंग वरिती। NDMA चयो आहे त मुल्क जे मथां इलाइक़नि में ग़ैर मामूली बरसातनि पवण जो इम्कान आहे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त मौसमियाती तब्दीलीअ वधंदड़ आबादी वॾो चैलेंज आहे। आलमी बैंक सां गॾिजी मौसमियाती तब्दीलीअ ते कम करे रहिया आहियूं। वफ़ाक़ी वज़ीर मोइन भुट्टो चयो त पाणी ज़खीरो करण जी सलाहियतुनि में वाद वक़्त जी ज़रूरत आहे। मुसद्दिक़ मलिक चयो त मौसमियाती तब्दीली सबबि मुतासिर थींदड़ मुल्क सूरतहाल जा ज़िमेवार न आहिनि। वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ चयो त NDMA सूरतहाल बाबति अॻुवाट अलर्ट करण जो निज़ाम जोड़ियो आहे।

0: करे छॾियो। नामालूम हथियारबंद मिस्त्री ज़ुल्फ़िकार कोलाचीअ खे क़तल करे फरार थी विया। लाड़काणो वेझो हथियारबंदनि घर अॻियां बीठल नौजवान खे गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। ॻोठ निहाल जे मियाणी में अणॼातल हथियारबंदनि नौजवान अकील अहमद सेतो खे क़तल कयो। मक़तूल नौजवान जे वारसनि जो उमराणी दुर ते नौजवान खे क़तल करण जो इल्ज़ाम। मटियारी मां गुज़िरियल ॾींहुं गुम थियल पोरेत जो लाश गंदे पाणी जे खॾ मां हथ। पोरेत टो उर्फ़ गुंगो जो लाश पीर सरंदे मोहले जे खॾ मां मिलियो। पुलिस पारां मामले जी जांच जारी आहे। फातेदाबाद में बंबा ऐं सुल्तानपुर शाखनि जी पुछड़ीअ जे आबादगारनि जो ॿिए ॾींहुं बे पाणी कोर्ट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252578 6।
3: जी हाँ 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

रेडियंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो व्हाइट एज ब्यूटी सोप व्हाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सनफ दंदड़े तमाम खूबसूरत मासूम ही सोने समात है मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरखुल दुआओं के समंदर, सातों की बारिश, लासवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक, आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात, जी से जगता जमीन से आसमान, जिंदगी से मौत, सांस से तर्द से खुशी तक, दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साथ में सलामत रखे, सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल सही, आप सुन रहे हैं ZFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मादली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप लोगों की खूबसूरती जनाब आप लोगों को मिलेगी अगर आप इस्तेमाल करेंगे। और जो भी प्रोडक्ट आपको बताए जाते हैं तो उनके बारे में आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से जान लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी खूबसूरती के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती का कैसे ख्याल रखेंगे या फिर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप क्यों इस्तेमाल करेंगे, तो सब कुछ बताएंगे। लेकिन कहते ना कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल जी, अपना तारुफ करवाते हैं लिसनर्स फॉर रीसेंट मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुनाई होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्रा आपके साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो जल्दी जल्दी से रेडी शेडी हो जाइए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और फन करने के लिए और खूबसूरत होने के लिए। ओके, जैसे के साथ साथ यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप अपने हाल चाल भी बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत की हालत कैसे है आपकी हालत, उम्मीदन चतीतन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ली है। आपको पता ना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि पूरे 2 घंटे हम आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाले हैं। और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ इतनी शाली बातें करने वाले हैं। ओके जी, यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी अंटियां, अमियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्के संभालने का काम करेगी भाई जान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के संभाल लाते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं और आगे से प्रोग्राम आपको सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा कसीदा। कसीदा सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

0: क्या बात है, क्या बात है। इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंडी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद है तो जरा आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। साथ ही साथ बताते हैं जी कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक क्या लेकर आए हैं, यानी कि आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो मेरे बहुत से लोग हैं, मेरे बहुत से लिसनर्स हैं जो कि बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे होने से मुराद ये कि उनको जो भी चीज ऐसी होती ना, जो भी कह देती हूँ तो वो मान जाते हैं। चलिए बातें तो खैर आपसे मनवा ही लेंगे, लेकिन साथ साथ अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो लाजमी कीजिएगा। और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ आपको डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, तो उनके बारे में भी आपने जरा सोच लेना है और समझ लेना है कि ये जो प्रोडक्ट आपको बताए जा रहे हैं ये आपकी स्किन के मुताबिक ही है और आपकी स्किन के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद है। चलिए जी बातें तो करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल जो पूछूंगी, वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप मुझे बताएंगे कि अगर आप, यानी कि मेरे जो लिसनर्स हैं उनमें कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो भाई काम करते होंगे ऑफिस में या फिर बड़े होंगे, तो आप मुझे ये बताएंगे कि अगर स्कूल या फिर ऑफिस में सिर्फ दो दिन काम करना होता, यानी कि सिर्फ आपने दो दिन जाना होता और पांच दिन की छुट्टी होती, तो आप बताएं जिंदगी कैसी गुजरती। क्या ये चीज अगर ऐसी हो जाए, सिर्फ आपने दो दिन जो है या तो ऑफिस में काम कर सकते हैं या फिर दो दिन आप स्कूल या फिर कॉलेज जा सकते हैं, बाकी पांच दिन आपको छुट्टी होगी, तो बताएं आपकी जिंदगी कैसी होती। ओके, अगर आप हमारा शो सुन रहे हैं पहली मरतबा रोजाना या फिर आप घूमने वाले लिसनर्स हैं, यानी कि चोरी चोरी चुके चुके आप हमें सुनते हैं, तो आप ऐसा करेंगे अपना सेल फोन उठाएंगे, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं और फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा फेसबुक पेज है जनाब। आप जैसे सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। आप आइए जल्दी से हमारे पेज के ऊपर और वहाँ पर आप हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बताइए आप हमारे साथ मौजूद है, कहाँ कहाँ से ज्वाइन करते जा रहे हैं और उसके अलावा कहाँ कहाँ पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं। ये आप लोगों के ऊपर बात आती है कि आप जरा सा कोऑपरेट किया करें, बताया करें। और जनाब इस्तेमाल करने के लिए आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल भी करा सकते हैं और वो कैसे वो सब कुछ बताएंगे, लेकिन आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो जनाब टॉपिक को जरा दोबारा से रिपीट करते हैं जो लोगों ने नहीं सुना। मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि बताएं जरा, अगर आपका स्कूल कॉलेज या फिर ऑफिस सिर्फ आपने दो दिन के लिए जाना होता वहाँ और पांच दिन की आपको छुट्टी होती, तो बताएं आपकी जिंदगी कैसी गुजरती। मुझे तो ये लग रहा है कि मौजे ही होती। बाकी आप अपना बताएं, आपको क्या लगता है अगर ऐसा होता तो फिर कैसा होता। ओके जनाब साथ यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, जल्दी से पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा। और आदिल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, लिखते हैं सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, ए बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे, अच्छा है दिल के साथ रहें पासबाने इल्म पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे, वाइज सबूत लाए जो मेके जवाज में, इकबाल को ये जिद है कि पीना भी छोड़ दे। ओके, और कहते हैं गाना सुनाइएगा, मैं कोशिश करती हूँ आपकी पसंद का गाना लगा देंगे। मोहम्मद वसीम अहमदानी हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, कैसी हो पहचाना मुझे। हाँ जी हाँ जी, हिदायतुल्लाह अहमदानी आपको वेलकम कहा जाता है। वैसे आपका ये लास्ट नेम जो है ना, ये खुद ही आपको पहचान क्या क्या आप कौन है। और सुफियान अहमद हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, आप कैसी हैं, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। और हमारे साथी अली मुर्तजा कहते हैं, तालीम की कमी को तरबियत अच्छी तरह ढांप लेती है, मगर तरबियत की शफाफ को तालीम कभी पूरा नहीं कर सकती। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कहते सलाम एंड गुड आफ्टरनून, प्लीज प्ले बोल कफारा क्या होगा, इतना सेडी गाना बोल दिया आते साथ ही, बोल तुम्हारा क्या होगा। अनवर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सदरा भेण, अच्छा अच्छा भामा तवाजी जी का प्योर सिंधिया ना हुआ, थोड़ी घट समझनी आया। सो तव्हां शायरी लिखी आहे, वस वस सारंग आसू पूरियूं कर, धरतीअ जी प्यास बुझाए, हर तरफ़ शादाबी कर. वाह वाह वाह वाह, वेरी नाइस. अखलाक बलूच भाई हमारे साथ नाजुक दे, हाय सदर, नाइस यो, नाइस यो, थैंक यू थैंक यू. अनवर भाई कहते बहुत खूबसूरत कसीदा आपने सुनाया, आपके क्या कहने, थैंक यू भाईजान, आपकी समातों का बहुत शुक्रिया. एहसन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मौला इस्लाम अदद, ओ माय फेवरेट आरजी मैडम मुस्कान, लालकना की पहचान, मैं भी आ गया, कैसी हैं आप और आपकी तबीयत कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी है, आप बताएं आप कैसे हैं? आबिद परियास्ती हमारे साथ ही भाई, हेलो. अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं और आपको भी वेलकम कहा जाता है. उदास लड़की कहती है अस्सलाम वालेकुम स्वीटी, वेलकम टू शो. टॉपिक फ्री लाइफ गुजरती, वैसे तो तुम तो वैसे ही फ्री हो, तो अगर तुम भी ऑफिस जाती, कुछ काम काज करती, तब तुमसे पूछा जाता कि बच्चों बताओ जरा, ऐसी लाइफ अगर आपकी गुजरती है तो फिर आपको लग पते जाते हैं. बाकी जेके घर में तो उन्हनि जे लाइ बि अज़ारा, हू बि चवंदा बाबा असां बि ख़ुशि न आहियूं, बाक़ी आहे केरु ख़ुशि हिन जो पतो लॻाईंदासीं. और चाचा खाली चुणी जो आ चुके, वालेकुम असलाम, मैं ठीक हूं जी, आप बताएं आप कैसे हैं? और हिदायत अला कहते काश ये होता तो मैं सिर्फ आपका शो सुनता और कोई काम नहीं करता. सदरा ऐसा होता तो क्या ही बात होती. योर टॉपिक आंसर. अच्छा महा,
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक. क्या आप
2: सिंध के माथे का झूमर,
3: GFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज.
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम.

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो?
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: आई हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ, बुड़ी 231-525-786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

नहीं खुश थी वेंदा ओके जी सो बुधायो था लेकिन उनका अलावा जिन मानन असा के हाणी हाणी जॉइन कयो आनन के भी वेलकम चाहू था तमा पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना रहो हमारे मां का सवाल पूछवा यानी कि प्रोग्राम जो टॉपिक आ है अगर स्कूल में आयो या कॉलेज में आयो या वरी तमा के ऑफिस में कम कयो था या का जॉब कयो था यो ई अगर सिस्टम हो जे हां तमा सिर्फ बडिया बनयो हां पंजी कम ते पंजी कॉलेज या फिर स्कूल बाकी पंज दिन तमा के रेस्ट करनो हो तमो के बुधाय जिंदगी तमा जी की गुजरे हां ता के छाथू लगे त पो असा जी जिंदगी की गुजरे हां तो हाने कम कार में बिजी आयो या सोचो था अगर एकड़ो डी मोकल जो मिले तो इलाही सारा कम होता है पेंडिंग में जो असा के करना पवना है पर जदे ई हो जे पंज दिन सिर्फ आराम करनो है सिर्फ बडी असा के पंजे कम ते वणनो है तो बुधाय त जिंदगी की गुजरे हां उनका अलावा तवा अगर पंजे करीबी जनरल स्टोर से वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अवेलेबल कराइन चायो था त पोई तवा के डायल करनो है 033-273-8-4309 या यो नंबर बंद मिले तो पोई तवा के डायल करनो है 03-12-50-25-907 नंबर साइन तवा जी आसानी से लाए ता पाने करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सको था चाहे वाइट एज जा प्रोडक्ट हो जन या वरी डी स्किन जा प्रोडक्ट्स हो जन ओके सो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स जी अगर गाल कई वने तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तवा जला केडा सोना सोना प्रोडक्ट आ है दिसो सोना सोना प्रोडक्ट आ है त तवा के सोनो बनाए छडींदा जेमे तवा के वाइट एज ब्यूटी क्रीम मिली रही है वाइट एज ब्यूटी क्रीम जका एकडी नाइट क्रीम आ है जेके तवा राजे टाइम इस्तेमाल करना सुमन का पेनी ता अगर पाजो फेस वॉश कयो था वाइट एज ब्यूटी सोप सा या वरी वाइट एज फेस वॉश सा त यकीन जानो तवा जी जेका खूबसूरती आ न सफा वदंदी रहंदी आई खूबसूरती जो ताल्लुक जे कोना न मा हमेशा तवा सा या गाल शेयर करनी आया त खूबसूरती जो मतलब सिर्फ अच्छो रंग गोरो रंग नाए हुंदो खूबसूरती में इलाही चीजों अच्छी वनन थी जे तवा जी स्किन क्लियर हो जे तवा जी स्किन ते एकनी न हो जन तवा जी स्किन ते रिंकल्स न हो जन तवा जी स्किन ते ही अखिन जेठा हल्का न हो जन तवा जी स्किन ते निशान न हो जन ये सब चीजों अगर तवा जी स्किन ता हटी वनन थी आई तवा जी स्किन गोरी भी थे थी त बाबा यो प्लस पॉइंट आ तवा जे लाइक तो ये सब चीजन के तवा पांजी जिंदगी मा रिमूव करी सको था आई पांजी स्किन के सफा बेदाग एंड गोरो बनाए सको था जदी ता वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा सो वाइट एज ब्यूटी क्रीम जे अंदर एवोकाडो आहे एलोवेरा आहे एंड मिल्क आहे ये सब नेचुरल चीजों आ जेके तवा जे खूबसूरती के वधाइंदो ए तवा के सफा वीआईपी सोनो बनाए छडींदो आई वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड तवा के वाइट एज जो साबुन मिली रयो आहे जेके मानु साबुन लगाइंदा न ओ साबुन लगाइंदा जेके मानु फेस वॉश लगाइंदा न ओ फेस वॉश लगाइंदा सो जेका शे तवा के इजी लगे तवा वा इस्तेमाल करी सगो था सो तवा के अगर बुधायो वने त वाइट एज जो को ब्यूटी सोप आहे ओ डिटो कॉपी आहे बाबा वाइट एज ब्यूटी क्रीम जी सेम टू सेम आइन बई एक जेड़ा सफा भाबेण लगंदा पर जदी तवा वाइट एज जो फेस वॉश वठण वेंदा त वाइट एज जो को फेस वॉश न उन जो कलर जेको आहे या उन जी जेका थोड़ी मां तव्हांखे सुञाणा बुधाया त हू ऑरेंज कलर जो आहे तवा वरी सोचींदा त बाबा क्रीम जो कलर थोड़ो ग्रीन आहे साबुण भी ग्रीन आहे त फेस वॉश ग्रीन छो न आहे त फेस वॉश ग्रीन इन लाइ न आहे छो त वाइट एज जो फेस वॉश आहे उहो वाइटमिन सी सां तयार थियल आहे इनके थोड़ो जो फार्मूलो उनके थोड़ो चेंज कयो वयो आहे जी तवा के खूबसूरती मिले साबुन लगांदे त तव्हांखे खूबसूरती त मिली वेंदी पर जेके तवा जी स्किन ते वाइटमिन सी जी कमी आ वाइटमिन ई जी कमी आ उहा कीअं पूरी थींदी सो उहा तॾहिं पूरी थींदी जॾहिं तव्हां वाइट एज जो वाइटमिन सी वारो फेस वॉश यूज़ कंदा फेस वॉश यूज कयो जी तव्हां जी स्किन ग्लोइंग थी वञे ब्राइटनिंग ब्राइट थी वञे तव्हां जी स्किन पे अगरि एंटी एजिंग आहे त उन जे लाइ बि तमामु ज़बरदस्त आहे तव्हां बिल्कुलु इस्तेमालु करे सघो था वाइट एज फेस वॉश हर स्किन टाइप जे लाइ आहे वाइट एज जा जेके बि प्रोडक्ट आहिनि उहे तव्हां जे हर स्किन जे हिसाब सां तयार थियल आहिनि तव्हां जी स्किन ऑयली आहे सेंसिटिव आहे ड्राई आहे नॉर्मल आहे कॉम्बिनेशन टाइप आहे हर स्किन जे मथां तव्हां आराम सां लॻाए सघो था उन खां अलावा वाइट एज जी लवली क्रीम जी तरफ़ अगरि असां अचूं था त वाइट एज जी लवली क्रीम जी त मां छा ई ॻाल्हि ॿुधायां बाबा एॾो ज़बरदस्त प्रोडक्ट हिकिड़ो तयार कयो अथऊं जो तव्हां जी हर स्किन जे मुताबिक़ आहे ऐं हर इंसान जे मुताबिक़ आहे हर इंसान सां मतिलबु इहो त तव्हां जे घर में ॿार आहिनि बच्चा आहिनि कुराड़ा आहिनि जवान आहिनि मर्द आहिनि मायूं आहिनि हर कोई वाइट एज लवली क्रीम जो इस्तेमालु करे सघे थो वाह साईं वाह वाह साईं वाह वाइट एज लवली क्रीम जेका अल्ट्रा वाइटमिन्स जो फार्मूलो आहे जंहिंजे अंदरि 30 वाइटमिन्स जा कैप्सूल एड थियल आहिनि जंहिंमें तव्हांखे वाइटमिन B3 मिले थो वाइटमिन ई मिले थो वाइटमिन सी मिले थो वाइटमिन डी मिले थो अहिड़ा खोड़ सारा वाइटमिन्स जेके जेके तव्हांजी स्किन खे नीड हूंदी आहे उहे सभु वाइटमिन्स जी कमी खे पूरा कंदा उन खां अलावा जेको आहे न वाइट एज लवली क्रीम जे अंदरि तव्हांखे सनस्क्रीम बि मिली रही आहे सनस्क्रीम खे अलॻि सां इस्तेमालु करणु वठणु सनब्लॉक ॻोल्हणु पंहिंजी स्किन जे मुताबिक़ सां ॾाढो मुश्किल कमु हूंदो आहे मूंखां पुछो मूंखां इहे कशाला मां कटिया आहिनि
अगर तव्हां चाहियो था त बाबा इहे मुश्किल में तव्हां न अचो ऐं तव्हां जे लाइ हिकिड़ो प्रॉपर सही तरीक़े वारो जेको आहे सन ब्लॉक हुजे त तव्हां वाइटेस्ट लवली क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था तव्हांखे जेको आहे सो ग्लो बि मिलंदो ख़ूबसूरती बि मिलंदी ऐं तव्हांजी स्किन जेका आहे उहा प्रोटेक्ट बि रहंदी इहे जेके उस जा किरणा हूंदा आहिनि तव्हांजी स्किन खे नुक़सान पहुचाईंदा आहिनि उन्हनि खां तव्हांजी स्किन बि बची वेंदी ऐं तव्हां ग्लो कंदा रहंदा तव्हांखे सफ़ा वी आई पी रिज़ल्ट बि मिलंदो रहंदो सो वाइटेस्ट जी लवली क्रीम हिकिड़ी फेयरनेस क्रीम आहे जेका तव्हां हर उमिरि वारो माण्हू लॻाए सघे थो हर स्किन जे मथां तव्हां लॻाए सघो था ऐं मेकअप जे तौर ते बि तव्हां लॻाए सघो था तव्हां काॾे वञो था पढ़ो था पढ़ायो था काॾे जॉब कयो था किथे पार्टी फंक्शन में वञो था का शादी आहे त तव्हां वाइटेस्ट लवली क्रीम खे लॻाए हीअं चुटकिन में रेडी थी सघो था उन खां अलावा अगरि तव्हां एक्नी जी वजह सां परेशान आहियो त तव्हां वाइट एज डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लॻाए सघो था डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको हिकिड़ो मेडिकेटेड फार्मूलो आहे हिन जे अंदरि जड़ी बूटियूं एड थियल आहिनि ऐं हीउ आयुर्वेदिक फार्मूलो आहे सो ही न सिर्फ़ तव्हांजे एक्नी जो ख़ात्मो करण जे लाइ तयार कयो आहे बल्कि हिन खे तव्हां चेहरे ते लॻाईंदा त तव्हांजे चेहरे जा निशान हुजनि एक्नी हुजनि या फिर तव्हांजे चेहरे ते कट जो निशान आहे को सड़न जो निशान आहे बचपन में कोई चोट लॻी उहो निशान तव्हांजे चेहरे ते मौजूदु आहे तव्हां हुन खे ख़तमु करणु चाहियो था त तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लाज़मी लॻाए ॾिसजो सफ़ा वी आई पी अथव पाण इस्तेमालु थियल आहे मुंहिंजो बाबा मां तव्हांखे इहो चवां थी त अगरि तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लॻाईंदा तव्हांखे ॾाढो भलो रिज़ल्ट मिलंदो ऐं तव्हांजे चेहरे जा जेके बि निशान आहिनि सभु चीज़ूं क्लियर थी वेंदियूं तव्हांजी स्किन सफ़ा बेदा गोरी गोरी थी वेंदी ऐं जिते जिते तव्हांजो एक्नी आहे निशान आहे कोई कट जो निशान आहे उन्हनि हुन चीज़ुनि ते सिर्फ़ तव्हां लॻाईंदा डॉक्टर पिंपल जो जेको ट्यूब आहे न तव्हां पंहिंजे पूरे फेस ते न लॻाइजो ठीकु आहे लॻाइण खां पहिरियां तव्हां पंहिंजो फेस वॉश कजो ऐं पंहिंजा हथ चङे तरीक़े सां वॉश कजो जॾहिं तव्हां क्लीन क्लीन रहंदा तव्हां पाण खे साफ़ सुथरो रखंदा त पोइ तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हांखे ॾाढी सुठे तरीक़े सां मिलंदी सो ख़ूबसूरती हासिल करणु चाहियो था त बाबा पंहिंजो चङे तरीक़े सां ख़्यालु रखो ऐं उन खां अलावा जल्दी जल्दी पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराईंदा रहो जीअं तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हांखे मिले ऐं तव्हांखे ख़बर हुजे त तव्हां कहिड़े जनरल स्टोर ते वञी पंहिंजे लाइ वाइटेस जा प्रोडक्ट्स परचेज करे सघो था बिल्कुल तव्हां सां गॾु मौजूदु आहियो किथां किथां ॿुधो पिया मूंखे ॿुधाईंदा ऐं हा टॉपिक जेको पुछो आहे हुन जो जवाब ॾींदा हलंदा ऐं तव्हांजा फीडबैक्स आहिनि बिल्कुलु पढ़ूं था पर गानो हलायो आहे त गानो बि ॿुधो

पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, बताइए कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं और साथ साथ वाइटेज का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। चाचा खालिद कहते हैं कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, इन वाइट एज लवली क्रीम शो में। सही है जी। इकबाल आशारी हमें सुन रहे हैं मीरपुर खास से, भाई को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। हबीबुल्ला थेबू हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम जी। निदली कहती है कि आई मैं तो चाहती हूँ कि कोई जॉब करूँ बट ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ जी, वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है। अनवर भाई कहते टॉपिक, अगर तनख्वाह पूरी 5 दिन वाली मिले तो ये स्कीम दुनिया की बेहतरीन स्कीम साबित होगी, लेकिन अगर तनख्वाह भी 2 दिन के हिसाब से कर दी जाए तो फिर इंसान कहेगा भागो भाई 5 दिन का काम ही भला। नहीं नहीं, तनख्वाह को पूरी मिलेगी, सुकून रखे। ओके जी, किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा स्मार्ट हाजिर है आपके लबों पर स्माइल लाने के लिए, भाईजान को खुशामदीद कहा जाता है। दीदार अली बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, दर्द दिल आ चुकी है वाशिया। वालेकुम अस्सलाम कहती है माय फेवरेट आरजे चंदा जानी, आप कैसी हैं, वेलकम टू शो खुशामदीद। अली मुर्तजा कहते हैं टॉपिक पर, 2 दिन काम करके 5 दिन सोता ही रहता, ना किसी से बात करो ना किसी के सुनो। सुकून वाली लाइफ हर किसी को चाहिए वाकई।

गई थी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और साथ साथ जनाब आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जल्दी से बताइए। इतनी जनाब ये कंजूसियां आखिर किस लिए, मैं ये बात समझ नहीं पाती हूँ। तव पांजे चेहरे सां भी लेखा कयो था, अल्लाह सही डो डींदव।

अच्छा निदा, आपने जो गाने की फरमाइश कर दी ना, ये गाना मैंने कल ही लगाया था 5 बजे वाले प्रोग्राम में। किशोर भाई कहते हैं सॉरी अज मुझे कंपनी जो वाईफाई हले न थो, बाकी नेटवर्क जी अवां के खबर आ टॉपिक बुधो ही कोना है। हाँ बुधो आ या अन्या कौन बुधो है। अच्छा दर्दी दिल कहती है अपनी जहनी सुकून के लिए 3 चीजें मुख्तसर रखी, अल्फाज, तवक्कात और लोग। बिल्कुल जी सही बात है। अच्छा हिदायतुल्ला कहते हैं कि हंसते दिलों में गम भी है, मुस्कुराती आंखें नम भी है, दुआ करते हैं आपकी खुशी कभी ना रुके क्योंकि आपके हंसी की दीवाने हम भी हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।

और ही प्यारा गाना हमने इंजॉय किया. एक और प्यारा गाना हमारी लिस्ट में है तो वो भी हम साथ सुनेंगे और साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं जी, तो ज्वाइन करते जाएंगे. और इसके अलावा मुझे बताएंगे कि अगर आपको ऐसी एक मतलब ऐसी एक चीज मिल जाए, आपको सिर्फ दो दिन, या तो आप कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, या फिर अपनी जॉब पर जाएं, सिर्फ दो दिन जाएं, ठीक है, बाकी पांच दिन आपने सिर्फ आराम करना है, तो बताएं जिंदगी कैसी गुजरती है.

कशमोर से एक लाख भाई हमारे साथ कहते सदरा प्लीज प्ले गानों हलायूं था बाबा हलायूं था और हमारे साथ है मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर वालेकुम असलम बाजी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है और सॉन्ग सुनाए हुमेरा सिन्हा का कोई भी अच्छा सा ठीक है भाई की लगा ले भाई को गाना सुनाएंगे जरूर से और यहाँ पर ईशा हमारे साथ है ईशा आपको वेलकम कहा जाता है और उसके अलावा हैं जी मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर भाई कहते मेरी प्यारी बेना सिद्रा मुस्कान हाँ जी भाई कैसे है ठीक ठाक है और चाचा खालिद आप पेनर पर मौजूद हैं आपको भी वेलकम कहा जाता है रसूलाबाद से आबिद शंपानी भाई कहते हैं दोस्तन खे अस्सलाम वालेकुम टॉपिक अदीब बाकी डी है वही अल्लाह अल्लाह कहूँ हाँ वाह अच्छा ये सलाम भाव अभी ज्वाइन किया तो फर्स्ट टॉपिक अब अच्छा कहते हैं अब छुट्टी तो बस ख्वाब ही बन गया है जब मैं लाड़काना में था तो भाऊ अपनी हाँ ये तो बात है वैसे अपनी मर्जी से जाता था अब अपना काम बस पूछे मत खबर पहची वही था न माना चले जी भाई इंजॉय करिए अपनी इस जिंदगी को भी क्योंकि आगे जो है वो क्या पता आगे मुझे ये लगता है कि हमारे पास जो ये अभी दिन मौजूद है ना इनको अच्छे तरीके से इंजॉय करना चाहिए हम ये सोचते हैं कि आगे हमारे लिए अच्छे दिन हैं लेकिन ये हमें लगता है ऐसा कुछ होता नहीं है तो जो आपके पास मौजूद है उसमें खुश रहने की कोशिश किया करें और हमारे साथ रियाज महर वालेकुम असलम रियाज महर

कामयाबी माणी आहे। चार सीटूं पीपल्स पार्टी खटियूं आहिनि। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त मीरपुर डिवीज़न में कुझु हंधनि ते अणवणंदड़ वाकिया पेश आया। हिकु ॼणो फोत थियो, छह वॻोड़ियुनि खे सोघो कयो वियो। वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम चयो त चूंडनि जो पुरमन ऐं शफ़ाफ़ रियासत जी कामयाबी आहे। चूंडनि में अॻवाणनि ऐं कारकुननि जी महिनत सबब कामयाबी माणी आहे। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि काबीना जी तवानाई बाबति कमेटीअ जो इजलास। कमेटी आयल रफ़ानिंग पॉलिसी 2023 जे मसौदे में तरमीम जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां ओगरा जी कारकर्दगी बहितर बणाइण ऐं सुधार आणण जी हिदायत। शहबाज़ शरीफ़ चयो त नई पॉलिसीअ ते अमल खे यकीनी बणायो वञे। वफ़ाक़ी वज़ीरनि जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जे हेड ऑफिस जो दौरो। मौसमियाती तब्दीलियुनि जे असरनि बाबति ब्रीफिंग वरिती। NDMA चयो आहे त मुल्क जे मथां इलाइक़नि में ग़ैर मामूली बरसातूं पवण जो इम्कान आहे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त मौसमियाती तब्दीलियां वधंदड़ आबादी वॾो चैलेंज आहे। आलमी बैंक सां गॾिजी मौसमियाती तब्दीलीअ ते कम करे रहिया आहियूं। वफ़ाक़ी वज़ीर मोहन वटो चयो त पाणी ज़खीरो करण जी सलाहियतनि में वाद वक़्त जी ज़रूरत आहे। मुसद्दिक मलिक चयो त मौसमियाती तब्दीली सबब मुतासिर थींदड़ मुल्क सूरत हाल जा ज़िमेवार न आहिनि। वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारण चयो त NDMA सूरत हाल बाबति अॻुवाट अलर्ट करण जो निज़ाम जोड़ियो आहे। ईरान सालसन ज़रिए अमेरिका जूं पहुच आयल तजवीज़ूं रद्द करे छॾियूं। नायब ईरानी परडेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त अमेरिका सां सालसन ज़रिए ॻाल्हियूं इस्लामाबाद में थियूं हुयूं, जेके अमेरिका जे ग़ैर ज़रूरी मुतालबनि सबब नाकाम थियूं। जंहिं बाद अमेरिकी वफ़द इस्लामाबाद खां वापसि हलियो वियो। जंहिं बाद ईरान बि ॻाल्हियूं जारी रखण जी ख़्वाहिश ज़ाहिर न कई। ईरानी फ़ौज चयो आहे त अमेरिका तेहरान जी ॿीहर नाकाबंदी कई त फ़ैसिले खे जंग में वाद सम्झो वेंदो। ईरान खे ख़रीद नथो करे सघजे, शिकस्त ॾेई सघजे थी। असां ईरान खे बुरी शिकस्त ॾेई रहिया आहियूं। अमेरिकी रियासत मिशिगन में तकरीब खे ख़िताब कंदे सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान जी बहरिया फिज़ाई दिफ़ाई निज़ाम अस्करी क़यादत खे ख़तम करे छॾियो आहे। ईरान हाणे असां सां मुआहिदे जूं ॻाल्हियूं करे रहियो आहे। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराक़ची जो ओमानी ऐं सऊदी हम मनसिब सां फोन ते राब्तो। आबन हरमुज समेत खिते जी सूरतयाल ते ॻाल्हियूं कयूं। ईरानी परडेही वज़ारत मूजिब अब्बास इराक़ची सऊदी ऐं ओमानी परडेही वज़ीरनि सां अमुन अमान जे क़याम ऐं सिफारती कोशिशुनि ते ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। अमेरिका ऐं ईरान पारां हिक ॿिए ते हमला रोकण बाद आलमी मार्केट में कचे तेल जे अघ में लाथ जो सिलसिलो जारी। आलमी मार्केट में बैरल कचो तेल घटिजी 86.99 डॉलर फी बैरल थी वियो। ईरान ऐं अमेरिका पारां हिक ॿिए ते हमलनि बाद तेल जूं क़ीमतूं 100 डॉलर फी बैरल खां वधी वियूं हुयूं। आज़ाद कश्मीर जे शहर रावला कोट मां पाबंदी मड़ियल तंज़ीम जो हथियारबंद गिरफ़्तार। अमेरिकी हथियार बेहथ हथियारबंद ज़ख़्मी गणती वारी हालत में अस्पताल मुंतकिल। जांच दौरान गिरफ़्तार जवाबदार जा छिड़काईंदड़ इंकशाफ़। दहशतगर्द मौजूद खेनि पाबंदी मड़ियल तंज़ीम पारां कार्रवाईनि लाइ अमेरिकी हथियार ॾिना विया आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में ॿ ॼणा क़तल, हिकु ॼणे जो लाश हथ। मीरपुर माथेलो भरिसां हथियारबंदनि फायरिंग करे ट्रांसफार्मर ठाहींदड़ मिस्त्रीअ खे क़तल करे छडि॒यो। नामालूम हथियारबंद मिस्त्री ज़ुल्फ़कार कोलाचीअ खे क़तल करे फ़रार थी विया। लाड़काणे वेझो हथियारबंदनि घर अॻियां बीठल नौजवान खे गोलियूं हणी क़तल करे छडि॒यो। ॻोठ निहाल जे मियाणीअ

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GAFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: आई। हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252586।
3: जी हाँ, बुड़ी 331 5 5 786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

देश किन ब्यूटी क्रीम अगर नाइट क्रीम आई जिनके तुम राजे टाइम इस्तेमाल करना इस्तेमाल कर बाबा सोना सोना थो खूबसूरती हासिल कर सफा घना प्यारा प्यारा थी उनके अलावा मर्द मायू सभी लगाए सकन था नथा मिलन तो तेजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल भी करायो जनाब हाँ तुम असा सगड़ मौजूद आए तो तेजे हुजन जो सबूत भी दियोता शामली प्रोग्राम थन्दा वनो पाया उनके अलावा जी भी मानू असा सगड़ मौजूद आए तवजा बिल्कुल मैसेजेस एंड फीडबैक आज असा शामली प्रोग्राम रखू पाया पर इत तवी पसंद जहा गाना तो जरा गाना भी बुधी वूं था गान की तरफ अचू था ही वो गानो है जो साहिब बगाजी आवाज में गानो है सो असा ही वो गानो बुधंदी

अच्छा तव्हांजे कॉमेंट्स आहिनि जल्दी जल्दी मथे मथे भॼंदा वञनि था ऐं उन खां अलावा जेके जेके माण्हू असां सां गॾु मौजूद आहिनि उन्हनि जे कॉमेंट्स खे बि पढ़ंदा हलंदासीं बाबा ऐं ॾिसूं था त केरु असां सां गॾु मौजूद आहे जेके माण्हू असां सां मौजूद आहिनि फेसबुक ते पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो ठीकु आहे अच्छा राशिद बलोच हमारे साथ हैं राशिद बलोच भाई क्या कहते हैं

ओके जी राशिद बलोच लिखते हैं कि आज़माए ॾिसो जिनसां तव्हां चङायूं कयूं हूंदियूं जिनसां तव्हांजो चङायूं थियल हूंदियूं तव्हां जूं गिलाऊं बि उहे ई कंदा वैसे ॻाल्हि सही आहे राशिद भाउ अच्छा रुखसार मेरी भी असो प्रोग्राम बुधे पे रुखसार मेरी तवाज मोहब्बतवान प्रोग्राम बुधो पया और ये गुलाम रहीम बलोच हमारे साथी वालेकुम असलम कहते अदा प्रोग्राम जबरदस्त आए तवाजो प्रोग्राम बुधू पया थैंक यू सो मच अदा किशोर भाई कहते हैं अदा मेरे लैपटॉप में हमेशा गूगल क्रोम न्यू टैब ओपन होता है जिससे मैं आपको चोरी चोरी सुनता हूँ ना मैडम को पता भी नहीं चलता और किसी और को तो आज वाईफाई नहीं चल रही है तो बस थोड़ा मसला है चले जी कोई बात नहीं वैसे ये आजकल हम ये सोच रहे थे कि नेटवर्क खराब हो गया लेकिन आजकल वाईफाई का भी सेम हाल है अब तुमको मार डाले बस क्या ही कर सकते हैं ये जुदाई अब तुमको मार डालेगी हमारी ये जुदाई मिलने कभी आए तो मिलेंगे ना दोबारा हाँ जी कभी भी नहीं तौबा कर ली

अच्छा मोतिया से थानी हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम चाचा खालिद कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम गुड है, बताओ ऑरेंज कलर किसका है? डी स्किन ब्यूटी क्रीम का तो ऑरेंज कलर बिल्कुल नहीं है, ऑरेंज कलर जो है वो व्हाइट एज के फेस वॉश का है, ठीक है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो व्हाइट व्हाइट है, लेकिन फेस वॉश जो है वो थोड़ा सा उसका जो कलर है ना वो मतलब ऐसा कलर है जिसके अंदर ब्लू है और व्हाइट है, हल्का सा ब्लू कलर, लाइट सा ब्लू कलर और व्हाइट कलर, इतना ये प्यारा कॉम्बिनेशन है कि आप परचेज करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वाह जी वाह हम कितने अच्छे प्रोडक्ट का इंतखाब कर चुके हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश आप ट्राई करके देखिए। डी स्किन फेस वॉश के बारे में आप लोगों को बताते चले तो डी स्किन फेस वॉश जो है ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है जो कि आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन का ख्याल रखने वाला प्रोडक्ट है। आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है, डीप क्लीन हो जाती है और

किशोर भाईजान आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. और ये हमारे साथ ही स्मार्टू गोपां कहते हैं, विथ रिस्पेक्ट मैं नाराज हूँ आपसे, मेरा सॉन्ग प्ले नहीं किया मंजू सखरानी का, मैं नाराज हूँ आपसे. अरे मंजू सखरानी का कौन सा गाना बताएं आपके लिए लगा देते हैं. अखलाक भाई कहते हैं कि छा गाल कजे वाइट एज क्रीम जी, हाणे कुराड़ा कुराड़ियों भी जवान थी वेंदा. बिल्कुल जी सही था जो.

गुलाम रही बलोच कहते पोई जिंदगी डाडी भली गुजरे हैं कमाए ऐ वेठो खाओ सही गाला वैसे। अच्छा निदड़ी कहती है कि ऐसा लग रहा है इस सॉन्ग पर ये अच्छा वालेकुम अस्सलाम कहते नाइस योर शो व्हाइट एश वाह वाह बेहतर है जी क्या बात है आप हमें सुन रहे हैं और व्हाइट एश का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहम्मद समान कहते हैं दिस देन यू विल ज्वाइन अस फॉर टू डेज सो वी डोंट वांट वैसे ये बात तो बिल्कुल सही है कि मैं सिर्फ आऊं प्रोग्राम करने सिर्फ दो दिन पांच दिन की छुट्टियां मेरे लिए तो मजे लेकिन आपको ये अच्छा नहीं लगेगा।

अरे मैं तो चाहती हूँ कि बस नहीं प्रोग्राम ही ना करूँ, बस मुझे सैलरी जो है ना वो मिलती रहे. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना. तो ये बात है, हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो ना चाहते हुए भी हमें करनी पड़ती है. तो बिल्कुल जी, आप ऐसा करें कि आप डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर लें. ये जो चॉइस होगी ना आपकी जिंदगी में, ये बहुत कमाल की चॉइस होगी. क्योंकि आपकी खूबसूरती जो है वो अगर डल हो चुकी है, चेहरे पर बहुत ज्यादा मसले आ चुके हैं, आपकी स्किन ऊपर से सेंसिटिव है, तो आपको चाहिए कि आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती को बढ़ाएंगे और हमेशा के लिए पाले पाले हो जाएंगे. अली मुर्तजा कहते हैं कि ये इस सॉन्ग वाला सीन चल रहा है आजकल मेरे साथ, समझ कुछ नहीं आ रहा पर मजा आ रहा है. बिल्कुल जी सही है.

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास. आप सुन रहे हैं White Ace and T-Skin Beauty Show. स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है White Ace Beauty Products and T-Skin Beauty Products के तावन से. आपकी सिद्धराव के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे. हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में. तो भाईजान आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया.

भाई अल्लाह बचाए, अल्लाह माफ़ी ॾे थो माण्हू ॾाढा जेके न हासदा आहिनि, हासदा समुझो था, सो बस अल्लाह बचाए, मालिक साईं पंहिंजे पनाह में रखे. उन खां अलावा बिल्कुल जी तव्हां डे स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो कोन, ॿुधायो पिया. ऐं डे स्किन ब्यूटी क्रीम जेके माण्हू इस्तेमालु कनि पिया उहे ॾाढा सुहिणा थियनि पिया, तव्हांखे रीस भला छो न थी अचे. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे. सो बाबा ॿई चीज़ूं लॻायो, जीअं सुहिणा सुहिणा थियो, सफ़ा सुहिणा सुहिणा थियो, ऐं पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल बि करायो.

जयपाल भाई बिल्कुल आपकी पसंद लगाते हैं जी, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं। और चाचा खालिद आप पैनल पर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। फायजाली का गाना लगा लिया इसी हमने डॉक्टर हसीना सुमरो के कहने पर। वोट गुलाब लगा रही, खास साबिर लगा रही, सुल्तान लगा रही, रिजवान लगा रही, वालेकुम अस्सलाम, आपको खुश आमदीद कहा जाता है। इरम कहती है मुझे प्यारी दोस्त जवाब है, मैं तो आराम करूंगी यार, अब आप भी बताएं आप क्या करेंगी, मैं भी आराम ही करूंगी और मैंने क्या ही करना है, और मैं तो चाहती हूँ मैं कुछ भी ना करूँ, मैं इतनी निकम्मी हूँ, मैं चाहती हूँ भाई कुछ भी ना बोले मुझे, सॉरी। अच्छा ये शोनी क्या कहती है, मैं मिस करूंगी, हाँ जी बिल्कुल मिस कीजिएगा। और जयपाल भाई कहते हैं भाऊ भाऊ ये बात है दरअसल कि जो हम पहला घंटा होता है ना उसमें वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, और जो दूसरा घंटा आ जाता है ना उसमें हम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, समझ गए। वाइट एज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो पहले वाले घंटे में आप लोगों को बता चुकी हूँ, अभी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को सिर्फ दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश। यस शुरू होते ही खत्म हो गया। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप ये जो प्रोडक्ट अभी बने हैं ना इनका इस्तेमाल कीजिए, ताकि आगे जाकर हम मजीद डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बनाते रहे। तो बिल्कुल जी नहीं मिल रहे आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर, तो नंबर जो बताए जा रहे हैं प्रोग्राम के अंदर उनके ऊपर राबता करते रहे, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहे और खूबसूरतियां हासिल करते रहे। मुन्नवर अली मुगल भाई हमारे साथ मेरे को खासे कहते हैं या इलाही बड़ा नाजुक जमाना है, दिलों में बुक्स रखते हैं बजाहिर दोस्ताना है, बिल्कुल भातमा वाजी गाल कही ये आए बाबा वरी अल्लाह बचाए एड़न माड़न का असाजी तो ओके जी तो खान जुदा करण जो गालियों कन था छोटा कयो बाबा ये अल्लाह से डो नींद।

0: प्यूरी क्रीम था वठो ओ भी गालियों कजो
1: तू मुखे महा को नहीं तोखे सोन में तोरे वठंदम
0: अच्छा जयपाल भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कहते ना हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है बिल्कुल नहीं ये लगे तू मुखे भी इरम वहां जो खाब डिटो आता वहां फौजी स्टेशन का फौजी पठान खान खोसो हमारे साथ है सिद्रा मुस्कान असा जी फरमाइश छो न था हलायो न तो जेड़ो कंदासी फौजिया सुमरो चौ से शहर छडे वने याला अगते छाए तवा जी फरमाइश हलाइंदासी बाबा जड़ो न कयो जड़ो न कयो असा जेड़े वारा मानु नायो बस सोनी आप अकेली ही चली जाए वरियाम हमारे साथ है बिरयानी खाओ तो हाजिर आए वरियाम तुम बिरयानी खाओ बाबा बिरयानी नालो बतव भुख लगी वही अच्छा फजीला सुधरी वनो बाबा सुधरी वनो ये चाओ भी ना तमाम बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी जो सही है

0: मैंने प्यार तुम्हें से किया है बाय मुमताज मलाई. सही गाना. रमजान अली हमें सुन रहे हैं. रमजान भाई खुश आमदीद कहा जाता है आपको. वाकई अजो पोइट्री पढ़ण जो मूड ना है. सो स्किप स्किप स्किप.
1: दिल के पसंद जी का कीमत न हूं दिया है.
0: हाँ बाबा गोल्ड मांगो थी वो आ इसमें तुम्हारा घर क्या तुम्हारी पूरी जायदादें क्या मतलब सब कुछ चला जाएगा फिर भी तू तोरे न सकंदे. हाँ जी सब कुछ चला जाएगा फिर पछताएंगा.

जी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो बाबा पहिरीं ॻाल्हि त इहा अथव जी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हांजे एरिया में नथी मिले त पोइ तव्हांखे डायल करणो आहे 03125025907 इहो नंबर बंदि आहे त वरी ॿियो नंबर आहे 03272738439 ऐं जी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा तो बिल्कुल जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम खास करके उन लोगों के लिए भी तैयार की गई है जो कि आप लोगों की स्किन के लिए ऐसा मसला हो जाता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर पाते यानी कि आपके चेहरे की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है तो सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई है। एक मयारी ब्यूटी क्रीम है ये आपके जल्द को नमी फराहम करती है चेहरे को नरम मुलायम बना देती है तरोताजा रखने में भी मदद देती है इसका बाकायदा इस्तेमाल आपके जल्द की बेरोन की भी खत्म हो जाती है वो भी वापस लाए गए और आपका चेहरा साफ रोशन और दिलकश बन जाएगा तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें शामिल है जनाब बहुत सारी चीजें जैसे विटामिन ई बीट माइक्रो बीट उसके अलावा अल्फा हर्बोटीन कोजिक एसिड ग्लूटाथायोन ये तमाम चीजें आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा उसके साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है जो कि आप लोग लाजमी लीजिएगा अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम क्रीमें नहीं लगाते हैं तो चलिए आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं लगाएंगे तो आप डी स्किन का फेस वॉश परचेज करके देखिए डी स्किन फेस वॉश जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको एहसास होगा कि भाई फेस वॉश एडो भलो आ तो क्रीम त वठूं जरूरी तब पोइ तव्हां क्रीम वठंदा इस्तेमाल कंदा त तव्हांखे मज़ो अची वेंदो सो डी स्किन फेस वॉश लगायो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो न मिलनि था त नंबर जेको ॿुधायो आहे उन्हनि ते राब्तो करे वठो।

सोने की चैन वाली जाऊं मैं सारी सारी सोन मांगो दिया था छू भला सबने के सोने नो याद आए भला आर्टिफिशियल भी तो मिले तो ने हाँ जी कॉपी आए तो वाइब ओरिजिनल जी इंदी आए हकीकत और ये कहते हैं सोन में तोरे तो सही अगर महबूब एक मणका मते जो निकतो थे उहा ई ॻाल्हि आहे न चवां थी इसमें सभु कुझु हलियो वेंदसि बाक़ी एॾो ई जाइदाद छो न हुजेसि पर इहो पॉसिबल न आहे इहो अॻे बादशाह कंदा हुया हाणे माण्हू न करे सघंदो न नको बिल्कुलु नही

ये गाना और ये ड्रामा क्या बात है, दोनों कमाल। अच्छा ये भाई जनाब कहते हैं, भाई साहब कहते हैं, कौन कमबख्त यहाँ गाने सुनने को आता है, हम तो आते हैं आपको सुन सके, आपकी मोहब्बतें समेट सके, आपके लबों पर स्माइल ला सके। किशोर भाई हमारे क्या बात है जी कहने। ये वैसे कौन सी मूवी का डायलॉग था, देख नहीं रही ना तो जरा भूल चुकी हूँ।

असली अखलाक भाई कहते हैं शुक्र रहा असां सिदरा के नेट ते बुधूं था हाँ भाई जी मतलब टेक्नोलॉजी जो दौर आए तो मानो नवा फायदो वटे सही था जो अली नवाज खान हमें सुन रहे हैं भाईजान आपको वेलकम कहा जाता है रिजवान अली भाई हमारे साथ है ये अगर कोई आपको खो देने के बाद खुश है तो यकीन मानो उसको आपकी परवाह कभी नहीं थी हाँ सही था जो अच्छा दीदार अली बिरोही कहते आज कोई गाना प्ले करो एडा गाना बुधराया थी मामा अन्ना अंदर नहीं ठहरी होते अच्छा भक्त अली सियाल भाई हमारे साथ मौजूद है वेलकम कहा जाता है दर्दे दिल कहती टॉपिक चंदा मैं कुछ भी करती वैसे भी मैं कुछ नहीं करती वैसे भी मैं आवारा हूँ आवारा नहीं इसको निकम्मी बोलता

लोगों के कॉमेंट्स ऊपर भी चले गए होंगे तो समझ जाइएगा जिनके शामिल ना हो सके, ठीक है। और बाकी तो राशिद खुड़ो हमारे साथ है, वेलकम जी वेलकम। और हाले सुल्तान हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम, हेलो कहते हैं आपको हाले सुल्तान, इतना मुश्किल नाम है आपका। अच्छा मुमताज अली भाई हमारे साथ कहते हैं इतनी वफादारी नहीं कर किसी से, यूं मदहोश होकर इकबाल, ये लोग एक खता पर हजारों वफाएं भूल जाते हैं। अय हय कितनी भली गाल कयो। आशिक खास के लिए हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम, भलीका चौं तो प्यारा भा तमां के भी प्रोग्राम पसंद अचे पियो सो मोहब्बतूं आइन। और वफा शहजादो मक्सी हमारे साथ है, गोठ मोहम्मद सफर मक्सी लाड़कानी खान, ओके जी भाई आपको खुश आमदीद। हिदायतुल्लाह कहते वैसे मैं रात वाला लिसनर हो गया हूँ, अब मैं आपका शोर रात में सुनता हूँ। चलें जी, और क्या काम काज भी जरूरी है ना जिंदगी में, बस मुझे ही तो नहीं सुनते रहेंगे ना, ये चीज मैं समझती हूँ, इसीलिए किसी से कोई शिकायत ही नहीं। अच्छा दीदार अली बिरोही भाई थैंक यू सो मच। और हैप्पी गर्ल कहती है आज मैं भी आ गई लास्ट लिंक में, और चलें जी थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं।

दर्द दिल कहती हम देखना चंदा फुल इस बीन में कमेंट्स पढ़ेंगे. बिल्कुल जी ऐसा ही है. बक्तली सियाल भाई थैंक यू सो मच. और निधड़ी कहती है कोई नब्बा चुप करे हुए. अच्छा हैप्पी गर्ल थैंक यू आप हमारे साथ. क्या कहती हैं शाम के प्रोग्राम में मिलते हैं. बिल्कुल जी शाम के प्रोग्राम में मिलते हैं. अली मुर्तजा चौथा हवाला भी माना महंगा थी वया. हाँ हवाला भी अजकल एड़ा न कयो न जेके महसूस थे तो ये हवाला आहिन समझो था तमाम मतलब डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए सकू था यो तो अफोर्डेबल आहिन सो तव्हां वञो वठी अचो. अच्छा मोहम्मद वारिस जूनी जो हमारे साथ है. ओके जी आपको भी वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. अच्छा टॉपिक वारो कमेंट जो ना दिठो ही नहीं शायद वाकई मथे भजी वयो या नेट की वजह से फांसी पे होके तारन में उलझी वयो. अच्छा शहबाज जमाली भा थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं. और ये हमारे साथ और कौन है गानों शाह मतलब खत्म थी उन्होंने हले तो हले तो.

0: जी गानो सफा भलो आए ही गाने जी फरमाश हिदायतुल्लाह अहमदानी कई हुई असा के बाकी हो जे के गाना रेजन पया ना जे के नहलाए सघ्या आयो कुछ कुछ गाना रेजी वया सो वे मां पंजे बजे वाले प्रोग्राम में हलाई ना आई जे के सैडी थोड़ा गाना हो जे ना मतलब थोड़ो ही लाइट हो जे उन जो टोन वे पंजे बजे वाले प्रोग्राम में दसिना के जे वे हलाए करे पो मां उन ते पोएट्री पढ़ी सका समझो ता सो पंजे बजे वाले प्रोग्राम में अच जो आई हां छो नहीं दो भला अचो ना वो बितान जो प्रोग्राम आयो आई तवा की खूबसूरती जो गाली बुधाई ना आयो सो तवा खूबसूरत थियो बाबा सबनी जो हकाय खूबसूरत थियो आई पाने खूबसूरती जो ख्याल रखो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल जरूर कर जो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले तो तां पाने करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम सा गड तवां के वाइट एज जा प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करना है वाइट एज जा प्रोडक्ट जके ना वे भी इलाही सारा प्रोडक्ट आए यानी कि वाइट एज सी लवली क्रीम आए फेयरनेस क्रीम आ एक्नी जो ट्यूब आ नाइट क्रीम आए साबुन आए फेस वॉश आए खोर सारा प्रोडक्ट आए जो भी तवां के सूट करे तवां बस वनो वठी जो इस्तेमाल करन स्टार्ट करो सो वरी मिलूं ता 5 बजे वाले प्रोग्राम में पांजो ओ हिडो जरूर ख्याल रखना ओ हिडो जरूर किते का गलती थी मुझे तो माजरत कयो
1: पाकिस्तान पीपल पार्टी की
0: अल्लाह हाफिज बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर
2: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: असल में रियासत नहीं है, फैसला करना है। रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है, पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है, ओनली का मफाद अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नूडली को मफाद को तरजीह दे रहे हैं, और इसका नुकसान कश्मीर को हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, और सबसे भरकर इसका नुकसान इस मुल्क का, इस रियासत का, अवाम का हो रहा है। और अब हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते हैं। हम रियासत के साथ हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, हम वफाक परस्त सियासतदान हैं, हम कौमी मफाद में हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं, हम कौमी मफाद पे रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। मैं रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि आंखें खोले के नून लीग के मुफाद के नाम पे, नून लीग के मुफाद के नाम पे पाकिस्तान का क्या हशर हुआ, नून लीग का मुफाद के नाम पे आप कश्मीर के साथ कर क्या रहे हो। ये आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है, हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। ये क्या चाहते वो चाहते, क्या कि चाहते हैं कि पूंछ आजाद कश्मीर, क्या वो क्या चाहते हैं कि मेरा मीरपुर आजाद कश्मीर की तरह ना लगे, मगर वहां का हालात ऐसे हो कि अगर 30-30 पोलिंग पे कब्जा किया जाए, गोलियां चलाया जाए, कारकुनों को शहीद किया जाए, किसी इंटरनेट पूरा कश्मीर में बंद किया जाए, तो ये आजाद नहीं लगेगा, मकबूजा लगेगा।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: GAFM 88
2: नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 3:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: Whiteish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंपली है। GFM 88 नेटवर्क सिंप की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: तू तो मेरा फैन।
1: White H Beauty Cream 5 Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: नून लीग पीपल्स पार्टी जा आजाद कश्मीर में धांधली वारा इल्ज़ाम रद्द करे छड़ा। मीरपुर डिवीजन में शफाफ ए पुरअमन चूंडू थियण जी दावा। वजीर आजम के सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त मीरपुर डिवीजन में चूंड माहौल तकरीबन पुरअमन रहो। 13 तकन मां 9 ते नून लीग कामयाबी माणी आहे। 4 सीटूं पीपल्स पार्टी खटियूं आहिनि। मीरपुर डिवीजन में कुझु हंधनि ते अणवणंदड़ वाकिया पेश आया। हिकु ॼणो फौत थियो, 6 वगोड़ियुनि खे सोगो कयो वियो। अमीर मकाम चयो त चूंडनि जो पुरअमन ऐं शफ़ाफ़ थियण रियासत जी कामयाबी आहे। आज़ाद कश्मीर जे मीरपुर डिवीज़न में थियल चूंड में नून लीग मैदान मारे वरितो। आज़ाद कश्मीर असेंबली जे 13 तकनि ते थियल चूंडनि जा नतीजा 9 ते नून लीग ऐं 4 ते पीपल्स पार्टी कामयाब। नून लीग जी कामयाबी ते लीगी कारकुननि जो जशन। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजनि मूजिबि LA 1, LA 4, LA 5, LA 7, LA 9, LA 11, LA 12, LA 13, LA 6 ते नून लीग जे उमीदवार कामयाबी माणी। LA 2, LA 3 ऐं LA 8 ते पीपल्स पार्टी उमीदवार कामयाब थिया। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि काबीना जी तवानाई बाबति कमेटी जो इजलास। कमेटी वारी रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 जे मसौदे में तरमीम जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां ओगरा जी कारकर्दगी बहितर बणाइण ऐं तेल जा ज़खीरा वधाइण जी हिदायत। शहबाज़ शरीफ़ चयो त नई पॉलिसीअ ते अमल खे यकीनी बणायो वञे। आबना हरमुज़ ते रुगो ईरान जो कंट्रोल न हूंदो। उमान गडि॒यल मेकनिज़म जोड़ण जी तजवीज़ ॾेई छॾी। परडे॒ही ख़बरू इदारे मूजिबि आबना हरमुज़ बाबति उमान जी तजवीज़ जा ख़िते जा बि॒या मुल्क बि हामी आहिनि। उमान जी तजवीज़ आबना मलका तर्ज़ जी आहे, जिते ख़िते जा मुल्क रज़ाकाराणे तौर फीस ॾींदा आहिनि, जंहिं सां आबना मलका जा ख़र्च पूरा कया वेंदा आहिनि। ईरान सालसन ज़रिए अमेरिका जूं पहुचायल तजवीज़ूं रद्द करे छॾियूं। नायब ईरानी परडे॒ही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त अमेरिका सां सालसन ज़रिए ॻाल्हियूं इस्लामाबाद में थियूं हुयूं, जेके अमेरिका जे ग़ैर ज़रूरी मुतालबनि सबबि नाकाम थियूं, जंहिं बाद अमेरिकी वफ़द इस्लामाबाद खां वापसि हलियो वियो। जंहिं बाद ईरान बि ॻाल्हियूं जारी रखण जी ख़्वाहिश ज़ाहिर न कई। ईरानी फ़ौज चयो आहे त अमेरिका तेहरान जी ॿीहर नाकाबंदी कई त फ़ैसिले खे जंग में वाद समुझियो वेंदो। ईरान खे ख़रीद नथो करे सघिजे, शिकस्त ॾेई सघिजे थी। असां ईरान खे बुरी शिकस्त ॾेई रहिया आहियूं। अमेरिकी रियासत मिशिगन में तकरीब खे ख़िताब कंदे सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जे बहरिया फिज़ाई दिफ़ाई निज़ाम अस्करी क़यादत खे ख़तम करे छडि॒यो आहे। ईरान हाणे मुआहिदे लाइ ॻाल्हियूं करे रहियो आहे। F-35 जहाज़ तुर्किया खे विकिरो करण बाबति कंहिंजी बि मशवरे जी ज़रूरत नाहे। तुर्किया असांजो बहितरीन इतिहादी आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़ची जो ओमानी ऐं सऊदी हम मुनसिब सां फोन ते राब्तो। आबना हरमुज़ समेत ख़िते जी सूरतयाल ते ॻाल्हियूं कयूं। ईरानी परडे॒ही वज़ारत मूजिबि अब्बास इराक़ची सऊदी ऐं ओमानी परडे॒ही वज़ीरनि सां अमुन अमान जे क़याम ऐं सिफ़ारती कोशिशनि ते ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। पाकिस्तान ऐं अमेरिका जे स्ट्रेटजिक भाईवारी वधीक मज़बूत थी रही आहे। पाक अमेरिका लाॻापन में मुस्बत अकबराई सुठो सवण आहे। इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त अमेरिका सां पार्लियामेंटी राब्ता बि वधिया आहिनि। भाईवारीअ खे वधीक मज़बूत करण लाइ कम करे रहिया आहियूं। वफ़ाक़ी वज़ीरनि जो नेशनल डिसाइडेड मैनेजमेंट अथॉरिटी जे हेड ऑफिस जो दौरो। मौसमियाती तब्दीलियुनि जे असरनि बाबति ब्रीफिंग वरिती। NDMA चयो आहे त मुल्क जे मथां इलाइक़नि में ग़ैर मामूली बरसातूं पवण जो इम्कान आहे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त मौसमियाती तब्दीली ऐं वधंदड़ आबादी वॾो चैलेंज आहे। आलमी बैंक सां गॾिजी मौसमियाती तब्दीलीअ ते कम करे रहिया आहियूं। वफ़ाक़ी वज़ीर मोइन वटो चयो त पाणी ज़खीरो करण जी सलाहियतुनि में वाद वक़्त जी ज़रूरत आहे। मुसद्दिक मलिक चयो त मौसमियाती तब्दीली सबबि मुतासिर थींदड़ मुल्क सूरतयाल जा ज़िमेवार नाहिनि। वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारण चयो त NDMA सूरतयाल बाबति अॻुवाट अलर्ट करण जो निज़ाम जोड़ियो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: तन में आहे तोत रातो नीराही चवे।
1: It's 4:15 PM.
2: This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
1: या नून लीग जो मफाद अहम है उन्होंने बदले हवार चूंड धांधलियन लाए कराई हूं आजाद कश्मीर में पंहिंजनि वोटनि जो तहफ़ुज़ कंदासीं मां हुननि खे मैसेज ॾींदुसि अवां खे अवां जो हक़ वठी ॾींदुसि मां पोइ हिते न हटंदुसि न ई कंहिं आॾो झुकंदुसि कश्मीर जूं 100 सैकड़ो सीटूं हुननि खां खसींदुसि।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है. GFM 88 नेटवर्क. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज. अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज. GFM 90.4.

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है हमारे लिए कौन ज्यादा है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं और सबसे बढ़कर इसका नुकसान इस मुल्क का इस रियासत का अवाम का हो रहा है और अब हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते। क्या मैं ये बर्दाश्त करूं कि मेरे कैंडिडेट के गांव में 30 पोलिंग स्टेशन पे कब्जा किया जाए? क्या हम पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं? वरना मैं भी सदर सरदारी का बेटा हूँ, मैं भी मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो का भांजा हूँ। मैं सियासत अगर करना चाहता हूँ तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह करना चाहता हूँ। मुझे मजबूर ना करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये सोचे।
2: डिवीजन में थे स्टूडेंट के रद्द करे छो नून लीग के धांधली जो इल्जाम, पीपल्स पार्टी की कामयाबी जी दावा। मुजफ्फराबाद में कारकुनन के खिताब कहते बिलाल भुट्टो सरदारी चो तो कौमी मफाद के पोते कर नून लीग के मफाद के तरजीह दियण वो सिलसिलो नओ ना है। रियासत के हाँ फैसलो करो पवन तो कौमी मफाद अहम है या नून लीग जो मफाद अहम है। उन मरहलेवार चूंड धांधलियन लाय करायूं। आजाद कश्मीर में पैंजन वोटन के तहफुज कंदी मां हनन के न छींदस अवां के अवां जो हक वठी डींदस पोते हटण वारो ना नई कें आडो झुकंदस कश्मीर जो 100 सैकड़ो सीटू उन्हनि खां खसे वठंदासीं।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लाण लाए
3: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331786।
3: जी हाँ बुड़ी 331-5-5-786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है. GFM 88 नेटवर्क. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज. अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज. GFM 90.4.

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: धांधलियन जा इल्जाम, नतीजा कबूलन का भी इनकार। लाल भुट्टो जरदारी मुजफ्फराबाद में कॉर्पोरेट के खिताब कर उमी मफाद के पोते करे नून लीग के मफाद के तरजीह दियण वारो सिलसिलो नओ न आहे। रियासत के हाँ फैसलो करणो पवंदो त कौमी मफाद अहम आहे या नून लीग जो मफाद। मरहलेवार चूंड धांधलियन लाइ कराई हुयूं। आजाद कश्मीर में पंहिंजनि वोटनि जो तहफ़ कंदसि ऐं अव्हां खे अव्हां जो हक़ वठी ॾींदुसि, पोइ हिते हटण वारो न आहियां। नई के आॾो चुकंदसि, पुरमन रहण चाहियूं न त आऊं बि सदर ज़रदारी जो पुट आहियां। मीर शाह नवाज़ ऐं मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो भाणेज आहियां। शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी सियासत करण चाहियां थो, मूंखे वधीक मजबूर न कयो वञे। बिलावल साहब, इलेक्शन जो फैसलो रियासत न पर अवाम कंदो आहे, तव्हां खे पंहिंजे बयानी ऐं हिकु ते ध्यान ॾियणु घुर्जे। बिलावल भुट्टो विसारे वेठो आहे त हिकु साल खां आज़ाद कश्मीर में सदन हुकूमत आहे। पीपल्स पार्टी जे दौर में आज़ाद कश्मीर जूं हालतूं ख़राब थियूं। सियासी बयाननि ऐं रोइण पिटण सां कुझु नाहे थींदो, कामयाबी लाइ कारकरदगी एजेंडा ऐं बयानियूं हुजण घुर्जे। वज़ीर अला पंजाब मरियम नवाज़ जो पीपल्स पार्टी चेयरमैन खे जवाब। मरियम नवाज़ चयो आहे त गिलगित बल्तिस्तान जी चूंडनि में पीपी जी कामयाबी ते वज़ीर आज़म वाधायूं ॾिनियूं। आज़ाद कश्मीर में कामयाबी न मिलण ते बिलावल भुट्टो धांधली जो इल्ज़ाम मड़ी छॾियो। सिंध में लाॻीतो 17 साल हुकूमत कंदड़नि वटि ॿुधाइण लाइ कुझु न आहे। रोड टुटल आहिनि, अवाम ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत घुरे पियो। सिंध जा रोड ऐं गवर्नेंस ठीकु करियो। कारकरदगी हुजे हा त पीपी चेयरमैन खे तनक़ीद जो वक़्तु न मिले हा।

0: जंहिंजे सीनियर वज़ीर शर्जीली नामे मण वज़ीरला पंजाब खे इस्तीफ़ा ॾेई ॿीहर चूंड विहण जो चैलेंज ॾेई छॾियो। शर्जीली नामे मण चयो आहे त मरियम नवाज़ उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई ॿीहर चूंड खटे ॾेखारे। हू बि सिंध जे कंहिं बि तक तां इस्तीफ़ा ॾेई चूंड विढ़ंदा। ख़बर पइजी वेंदी त पंजाब जो अवाम तव्हां सां केतिरी नफ़रत करे थो। पंजाब में अव्हां खे ख़ैराती ऐं फॉर्म 47 तहत हुकूमत मिली आहे। आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली करे पीपल्स पार्टी जो मैंडेट चुराए वियो। तव्हां पंहिंजी भेट पीपल्स पार्टी सां न करियो। पीपल्स पार्टी जी क़यादत अवाम लाइ क़ुर्बानी ॾिनियूं। तव्हांजी क़यादत सदाई ॾुखे वक़्त में मुआदा करे मुल्क मां भॼी वई। आज़ाद कश्मीर चूंडनि जे पहिरें मरहले में नवाज़िक मैदान मारे वरितो। पीपल्स पार्टी खे शिकस्त। मीरपुर डिवीजन जे 13 तकनि मां 9 ते नून लीग ऐं 4 ते पीपल्स पार्टी कामयाब। वज़ीर आज़म जूं आज़ाद कश्मीर में कामयाबी ते पार्टी अॻवाननि ऐं कारकुननि खे वाधायूं। शहबाज़ शरीफ चयो आहे त आज़ाद कश्मीर जे वम नवाज़ शरीफ जी क़यादत ते एतमाद कयो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढाडो सुठो
2: GAFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

जीवनानवरे जो सुख्या डुबरा पाण में भाकुर विजू भरे ही कायम रहे कयामत ताई मोबद कड न मरे पंजल थियूं न परे जैसी जेरायो जान में।

0: സദാശ
1: वाली हिन सिंध ते का अड़ी वराण वरे जो सुख्या डुबरा पान में भाकुर विजूं भरे ही कायम रहे कयामत ताई मोहब्बत कड़ न मरे पंजल थियूं न परे जैसी जेरायूं जान में।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।